को हेराइली छाती भित्र झुक झुक झुक झुक पहाड़ चढ़ता लेक लाचा चढ़ाई गर्मी झेलाई पहाड़ चढ़ता लेक लाचा

धरती माटी मिठ माओ पानी झे चंदन माटी निहराओ तू बोझे धरती माटी मिठ माओ मत धातु मात्र मोती हो मत फूल पूजा को दे।